हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक अवगुण को न चितार अवगुण को न चितार गल से ती लायक ज्ञान रास नाम तन सौंपियो नू इस सौदे लायक सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता यानी साडा दोवां दा सांझा हो गया आपस विच सांझी गुरु।

लैसी पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख मांगे सो देना पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवे कोई ढोल वजा के निशान लैके उस दे मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण ओदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाई, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी प्रवाह ना कर दी होई उस दे मगर लग पई आ। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसे दी प्रवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

ना डरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटिए, जुलम नूं देख के कदम पछा ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीयां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे सिपाही जांदे ने दिन भर सिंघां नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने, ते इह जुलमी सामने खलो के कोह कोह के मारदा है। अज जिहड़े सिंघ पकड़ के लियांदे ने ना, इन्हां दे विच इक 18 साल दा नौजवान, बुढ़ड़ी मां दा इको इक सहारा। जदों मां नूं पता लगा मेरे पुत्र नूं पकड़ लिया है, पापी राजा जुलमी राजा सिंघां ते कहर टांदा है, मां दा दर्द उठिया, रहा ना गया, राजे दे दरबार विच गई, मेरा पुत्र सिंह नहीं, तेरे सिपाही उनू भुलेखे नाल लै आए ने। बई ठीक है, जे तेरा पुत्र कह देवे मैं सिंह नहीं ते असी उनू छड़ देवांगे, केड़ा है ओ सामने बंधिया होया है। सिपाही लेके आए, असी तेनू छड़ रहे हां, सानू पता लगा है कि तू सिंह नहीं है। अज गुरु दा प्यारा कूक कूक के बोलिया, कौन कहंदा मैं सिंह नहीं, मेरी दस्तार वल तक, मेरे चेहरे वल तक तेनू मैं सिंह नहीं लगदा, कौन कहंदा है। ओ सामने तेरी अम्मा खलोती है, वो कहंदी है नहीं नहीं ओ मेरी मां नहीं है। अब तक लो सिखी किन्नी प्यारी है सिख नूं, ओ मेरी मां नहीं, हो सकता है ओदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर ओ सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मावां इंज सिदकों डोलदियां नहीं हुंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक बारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ए तेनू छड़ देंगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, याद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका, अजे बहुते दिन नहीं होए, किवें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नूं सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, याद कर। सिंघां दियां मावां कदों सिदकों डोलदियां ने, ओ ते आखदियां ने जा पुत्रा, अज गोविंद सिंह नूं तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया, इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लकोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तर दे जकारे निकल रहे।

गाउंदी होई अज एक मां धर्म दी खातर अपने पुत्र नूं वार के टुर गई है। किवें चाह है सिंघां नूं शहीदियां दा, इन्हां नूं मौत कोलों डर नहीं आंदा? नहीं ओए, इन्हां नूं मौत कोलों डर नहीं आंदा, सगों मौत इन्हां कोलों डरदी। दरबार सजिया है, कलगीधर महाराज तख्त ते बैठे ने, पिछे बैठी एक माई रोई जांदी। सतगुरां ने इस नूं कोल बुलाया, क्यों बई क्यों रोंदी है, तेनू की गल है, केड़ा दुख है? महाराज, मेरा पति ते मेरे दो पुत्र जंग विच शहीद हो गए सन। ओह समा मैनू अजे तक याद है, जदों तुहाडा स्नेह साडे घर तक पुजा सी कि मैदाने जंग विच जाना है। मेरे पति ने कितना ही पुत्रां नूं कोल बिठाया ते आखिया, बच्चे अज ओ समा आ गया।

ऐ गल नहीं। माता आख रही है, ना महाराज ऐ गल नहीं, हजार वार इस धरती ते आवां, हजार वार तेरी शान दी खातर पति ते पुत्रां नूं बाहर जावां, कौन मरनों डरदा है। रोना इस गल दा है जदों मेरा पति ते पुत्र घरों जंग वास्ते टुरन लगे सन ना, ते एक मेरा पुत्र बीमार हो गया सी, जो अजे तक बीमारी नाल मंजे ते पिया है। मैनू डर रहिंदा है किथे बीमारी नाल ही काल वस ना हो जावे। महाराज मेरे पुत्र नू ठीक कर दियो, तेरे एक इशारे ते मैं अपने पुत्र नू नाल ले के मदाने जंग विच जूझ जावां। महाराज सुन के हैरान होए, कलगीधर चमत्कार विच यह इतिहास लिखिया है अज जो तुसी इस कैसेट विच सरवण कर रहे हो। तन तन है सिंघणीए सिदक तेरा, भले जगत दी खातर आप मोई। तन है सिंघणीए, तू अपने पति ते पुत्रां नू जीवन मुक्त करवा लिया, फिक्र ना कर, तेरा पुत्र बीमारी नाल नहीं मरेगा, ना कर फिक्र। गरीबां ते मजलूमां दी खातर सरबत दे भले लई जंग विच जूझदा होया शहीद होएगा, ते गुरु नानक दी गोद विच जा वराजेगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त होवेगा। चरणा नू पकड़ लिया, महाराज एयो ही चाहती सी, मेरा पति ते मेरे दो पुत्र तेरे इशारे ते शहीद हो के सचखंड बराजे होणगे, ते असी क्यों बांझे रह जाइए। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का उपदेश कदी भी सिंघा ने नहीं भुलाया, अज तक भी सरबत दे भले लई अपना सिर अगे डा देंदे ने। एयो ही अरदास, देहे शिवा बर मोहे एह, शुभ कर्मन ते कब हो ना डरो, ना डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चे कर अपनी जीत करूं। ए महाराज, ए सतगुरु, ए मालक, सरबत दे भले लई कर्म करदिया होया, चंगे काम करदिया होया, साडे कदम कदी भी पछा ना हटन, ये सिर ते बेशक चला जाए, असी सिदको ना हारिए, तू सानू एहो

कुमार जी श्री दर्शन कुमार जी वालों पेश कीती गई है। आप समूह संगत नू खालसा जी दे 300 साल

बाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं छपे छंद तप प्रसाद चक्र चेहन अर बरन जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत केहे अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहो सहान गणिजै त्रिपवन मही सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम बरनत सुमत पुजंग पर्यात छंद।

तू मेरे कम लग जा, मैं तेरे कम लग जाना। मैनू तू अपना कम दे दे, मेरा कम तू ले। संसार च ऐसा चल जाता, एक दूसरे दे काम आना, जिस काम दी जिदी जिन्नी समर्था होवे। बड़े पुराने समयां तो बंदा काम दा लैण देण करदा रहे। जेड़ा काम मैं नहीं कर सकदा, जेड़ा कर सकदा ओनू जाके बेनती करा, तू ए कर दे, एदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना ओ मैनू दस। एक दूजे दे काम आ सकी। संसार च भी ऐसा वरते है, पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा कीता है कि मेरा काम कर सकेगा, ओदी समर्था थोड़ी होने करके कई बार निराशा का मुंह भी वेखना पिया होगा। महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर काम आउन दी, एक दूजे का काम करन दी सांझ पाउनी है, तू वाहगुरू नाल पा के वेख। मालिक तू जो चाहे कर सकना, तेरी समर्था महान है, कर्ता पुरख जो है सब कुछ कर सकना, ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैथों कुछ भी नहीं हो सकता। जब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा, अरदास तो हो सकती है। और सच्ची गल जानना, अरदास च खड़े हो जाना ही रब दा काम है। ओदे काम लगन दा मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए, ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे विच। और जिसले साडे हथ जुड़ जाण, मस्तक न्यों जाए, इहदे दो अर्थ हुंदे ने। हथ जुड़ जाण दा मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना, इन्हां हथां ने कुछ नहीं कर सकना, इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं, यह हथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने, इन्हां हथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन। आप करता पुरख हो, इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना, यह हथ बज गए, यह हथ तेरे सामने जुड़ गए, इन्हां तो कुछ नहीं होना। एक तो दोवें हथ बन के सत्कार हुंदा है ना, किसी दूसरे का अभिवादन करना हो, आदर करना हो, भी हथ बनने। लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हथ बनने का मतलब यह भी हुंदा है कि इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना, बल्कि जिसले मत्था टेक देने हैं, इहदे पिछे भी दो गोज भाव ने। एक तो यह हुंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैण आया, लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने आ सी, मत्था टेकने आ पातशाह, इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं, इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जाना, मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता, मेरे सोचने च बड़िया भुलां ने, मेरी थां सोचो भी तुसी, मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौंत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी, ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो। मैं तुहाडी अरदास जुड़िया हुआ, अरदास अर्ज दाश्त बेनती कर रहा हूं, अर्ज कर रहा हुआ, मैं केवल अरदास जुड़िया हुआ। एक ते जुड़ जाए ना बंदा, साहिबा ने विश्वास दृढ़ कराया, बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। ये वखरी गल है, मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है, जुड़ना ही औखा है, अरदास जुड़ जाना ही औखा है, नहीं जुड़े जाता तो ये वास्ते भी अरदास करिए, बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए, तू मैनू अपनी अरदास जोड़ लै, अपनी भगती नाल मेरी लिव एकागर करने की समर्था मैनू बख्श, फिर मैं अरदास च लगा होवांगा, हथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा, भगती च लगा होवांगा। प्रभु का होर कोई काम साथों थुड़िया नहीं पिया, वाहिगुरू का कोई काम साडे गोचरा नहीं, प्रभु केवल प्यार चाहुंदा साडे कोल, सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा है। ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए, अरदास करनी आ जावे ना, फिर की हुंदा है, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। एक तां हुंदा ना काम हो जाना, काम कर लेना, काम नबेड़ लेना, ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना, पहला तां करन तों पहला ही थड़कदा हुंदा है, घबराया हुंदा है, डगमगाउंदा है, ते जे किते काम हो जाए हंब के बह जांदा है, पसीने पूंजदा है, सजना मित्रा नूं कहिंदा है शुक्र करना काम निबड़ गया, बंदा केवल नबेड़ सकदा है। लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं, सतगुरु कार्ज सवारदा है। वड्डी वड्याई अचरज शोभा, उस कार्ज विच शोभा हुंदी, मान हुंदा है, सत्कार हुंदा, उस कार्ज दी वड्डी वड्याई हुंदी,
ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਬਿਨਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਚ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਏ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ

करनी है, अरदास ही करनी है, ते किसी छोटे मोटे अगे कानू करनी है। सोई त्याईये जीयड़े सिर शाहां पातशाह, जो सब तो पातशाहां तो शहनशाहां तो वड्डा है। शाहां दे सिर ते जो पातशाह है ओदा ध्यान कर, ओदी ओट तक, ओदा आसरा तक,

चांदा ते है तू परमात्मा दे नाल मिला, पर किवें तेरा मिलाप परमात्मा दे नाल होवे। जेड़े गुण परमात्मा चाहुंदा है वो ता तेरे विच नहीं हन, क्योंकि चंगा इंसान किसी चंगियाई नाल है, शुभ गुना करके है, शुभ कर्मा करके है। जे शुभ गुण नहीं, शुभ कर्म नहीं, ते वो चंगा किवें हो सकदा है। साहिब कथन करदे ने कि परमात्मा नाल मिलाप ते हर कोई मनुख चाहुंदा है कि मेरा परमात्मा नाल मिलाप हो जाए, मेरा संबंध जुड़ जाए। पर किवें?

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जिहड़े बोल बोल की मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवां। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा भरिया। तकना के परमात्मा रूप कैसा वेखदा, शारीरिक रूप नहीं वेखदा,

कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला होवे, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिदे ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

सास काती अकिर्त कन में कोई ना रखन। विशास काती अकिर्त कन, विशास काती किसनू कहिंदे ने, जेड़ा किसे नू प्यार विच लिया के विसा के मारे, अपना बना के मारे।

कुत्ते दा मास शराब चिरने ते मनुख दी कोपरी विच बने एक रत्तू भरे कपड़े दे नाल बीबी तक के लजा रही।

ले हर वक्त तेरे मन दी हरेक कामना पूरी कीती है। सेवका वांग उस दी भगती करदा रहो। अते हे दास नानक आख, मैं उस प्रभु तो सदके जांदा हां, जिसने विघना दे टाकरे हर वेले पूरे तौर ते इज्जत रखी है।

दुनिया विच आया है मनुखी जामा प्राप्त करके सफल करन दा साधन है सेवा। सेवा एक ऐसा ड्राफ्ट है जेड़ा तुरंत ही कैश हुंदा है। पड़ोसी दी सेवा रात दे एक बजे अचानक उदी तबियत खराब हो जांदी है, मनु पता लगदा है तुसी अपनी निंद्र दा त्याग करके उदी सेवा वास्ते हाजिर हो जांदे। हॉस्पिटल लेके गए, जिन्ना च उनु आराम नहीं आया तुसी उदी सेवा विच लगे रहे। याद रखो जिंदगी भर तुहाडा वो एहसान मंद रहेगा। इहदे नाल ही रब ना करे किधरे तुहाडे नाल इस तरह गुजरे जिन्हें तुहाडी सेवा दा फल प्राप्त कीता है, वह भी पिछे नहीं रहेगा। तुहाडी सेवा वास्ते उसे तरह उहदे नालों भी ज्यादा तत्पर रहेगा। तो सेवा एक ऐसा फल है, सेवा करो ते सेवा प्राप्त होंदी है। ताही ते सियाणियां दा कथन है, कर सेवा मिले मेवा। गुरु महाराज ते कहंदे ने इस दुनिया दे विच आया है सेवा करके जस खट लै। ते जदों दुनिया दे विच जस खटेगा, दरगाह दे विच जाएगा, उत्थे भी तेरी जय जयकार होवेगी। कहो नानक बहां लुड़ाई है, उचियां बहां करके मान नाल बड़ी शान नाल उत्थे जावेगा ते तेरी सारे ही जय जयकार होवेगी। ये सेवा दा फल है, इंसानियत दी सेवा। मनुख मत

तेरी ये जवानी को मला जावेगी, थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने केड़े वेले आना है।

भाई तू क्यों रोना है, ते रोन वाला कवेगा मेरा कुछ सज्जन मेरा प्यारा सौंगे है टिकया उठ पवेगा रोन दी केड़ी लोड़। ता जवाब दिता उस सुता एहो जी जगह है जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान। जीरान कहते ने कब्रस्तान, कब्रस्तान जाके सौ गए ने जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया। ए भाई एक दिन सारिया ने उत्थे सोना है।

लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यों मौला, अलिप्त रहूं जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत है बहुत भियाला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। पूरा